0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: ओडोडो नमोनी यू ये कारमों के लोना चोली को दिखा लीजिए जाने पहले

0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो

0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियूम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो